0: नमस्कार
1: रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैठे थोपलो 7 MHz मुपदी प्रसाद सागकोट आज विक्रम संवत 2083 साल भाद्र शुक्ल पक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 24 तारीख आश्विन 8 गते बिहीबार त्रयोदशी तिथि अब स्तुति गरौं
0: आयु द्रोण कुमार कैसरिया साक्षेण कल्पय भरी

0: जल्दी गई सुरसा अगिल तिरवा सिन सामने हनुमान का क्या वंशन हनुमान भनेर खुशी भई गरिन कुरा खान का क्या वंशन हनुमान भनेर खुशी भई गरिन कुरा खान का
1: अथ मानस कुजास्तोत्र रत्नै कल्पितमासनम् इमजलैः स्नानं च दिव्यं वरम्।

0: हरि परमात्मा।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शङ्ख कपाला भूषित करौ, मालस्ती माला धरौ, देवौ द्वारौ तिस्म सानन निलौ, नागरी गोवर्धनौ, त्रिरक्षे बलिदक्षे यज्ञमा।

दुर्वासा अगिथे कुमार पछी थे जय राम जय बोल दथे बाटो घाटो बजार ढाकी दरबार को मार्गली चल दथे यस्ता पुण्य महर्षि को न चुके लौ लौ गरौं दर्शना